दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी फरमाइशी गीत मैं जरूर सुनवाऊंगी, तो भेजते रहिए अपनी फरमाइशी मुझको। तो बने रहिए मेरे साथ हर शनिवार शाम 7 बजे फ्रेश FM पर। जी हाँ, मैं आपकी दोस्त विनीता चंद्रा। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू फ्रेश FM। आई एम योर होस्ट विनीता चंद्रा। ज्वाइन मी नेक्स्ट वीक फॉर मोर म्यूजिक एंड चैट। फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया फॉर अपडेट्स। कीप सेंडिंग योर रिक्वेस्ट एंड थॉट्स। स्टे सेफ, हैप्पी एंड कीप द म्यूजिक प्लेइंग। टिल देन, गुड बाय। कीप स्माइलिंग विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।